0: पात्र वर्ग जुड़ेत नेलविटा नोरोन्ना जिल्फा जुड़ीत सकर्ण क्लीटा नोरोन्ना नेबुकडनेजर अस्सीरिया सोराय रोशन डिसोजा होलोफेरनेस अस्सीरिया रायसो सेनाधिपति लेस्ली फेरावो अस्सीरिया सैनिक रोशन फोनसेका निशान डिसिल्वा अने स्टालोन डिसिल्वा उज्जिया बेतुलिया सोमुकेली रॉय सिक्वेरा काब्रिस प्रकाश फोंटेरो कार्मिस विजय मिरांदा बेतुलियाचे सैनिक मैक्लिन फर्नांडिस अने एलेर अक्योर अमोरितनसो सेनाधिकारी नीलेश रस्कीना नास मरुला गिब्सन दिव्या पेन्ना विजेता आल्फ्रेड टीना पशावो संगीत साइमन पाइस बजाल उजवाड क्रिस्टी आवाज अजित इलेक्ट्रिकल्स जप्पो वेस पिंत्रावणे गिरियप्पा इडिया समाज सूचक ग्रेटा करवालो अने मरिटा डिसोजा सहकार मना देख मैक्सिम सोजो विगार जप्पो फिरगस रचन मना देख बाप रोनिस सेराओ निर्देशन ऑलविन मिरांदा जप्पो
1: आता मी जुडी या नाटकाचं मुख असलो वाटतो ऐकूया.

0: वर्ग जुड़ेत एलविटा नोरोना सिल्फा जुड़ीत सकन क्लिटा नोरोना नेबुकडनेज़र असीरिया सोराय रोशन डिसोजा होलोफर्नेस असीरिया राय असो सेनाधिपति लेस्ली फेराओ असीरिया के सैनिक रोशन फोंसेका मिशेल डी सिल्वा आणि स्टॅलॉन डी सिल्वा जिया मेटुलिया समुखेली रॉय सिक्वेरा कब्रेस प्रकाश फोंटेरो कर्मेस विजय मिरांदा मेटुलियाचे सैनिक मॅकलिन फर्नांडिस आणि एलेर अक्योर अमोरितन असो सेनाधिकारी निलेश रस्किना नास मरुला गिब्सन लिविया मेन्ना विजेता अल्फ्रेड टीना शाशाओ संगीत साइमन पायस मजाल उजवाड क्रिस्टी आवाज अजित इलेक्ट्रिकल्स जपो वेस कंत्रावणी गिरियप्पा इडिया समाज सूचक ग्रेटा करवालो आणि मरिटा डिसोजा सहकार मना देख मॅक्सिम सोजो विगार जप्पो फिरगस रचन मना देख बाप रॉनी सेराओ निर्देशन ऑलविन मिरांदा जप्पो
1: आता मी जुडी या नाटकाचं मुकस लोवांटो ऐकूया.